0: చిత్రగీతం విన్నారు. ఆకాశవాణి కొత్తగూడెం కేంద్రం నిలయంలో సమయం 8 గంటలు కావస్తుంది. కొద్ది క్షణాల్లో సమాచార్ ప్రభాత్ హిందీలో వార్తలు, అనంతరం 8:15 మార్నింగ్ న్యూస్ ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రంలో రిలే.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की. राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे. भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा. चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया. जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए. भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई. और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है. सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे. केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी. डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे. सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी. भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा. हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी.
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं. इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है. सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए. नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया.
3: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है. जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है. अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है. हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी.
1: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं. इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर

0: के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: गालिम लोशन,
2: गालिम लोशन, गालिम लोशन, वो है गालिम लोशन।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग गालिम लोशन।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
4: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
5: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
4: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
6: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का

0: काम हम करते हैं।
1: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री की रिपोर्ट।
2: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश केएस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरियंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर 1 दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसी ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
6: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत।

0: हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सऊदी से उड़ाने बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका। 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग, नव भारत टाइम्स की खबर है। पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट 6 गवर्नर्स। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर मूव टू तमिलनाडु एंड ओपी माथुर टू केरलम। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली टुडे। Election Commission launches nationwide outreach drive to ensure no eligible voter is left out of electoral rolls. 4 Lashkar-e-Taiba terrorists killed in landmine blast at LOC in Poonch district of Jammu and Kashmir. India's internet subscriber base crosses 111 crores. And in badminton, Denmark Open 2026 to begin today in Odense. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has appointed governors for 6 states. Mr. O.P. Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Keralam. He will replace the current governor of Keralam, Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Mr. Dushyant Gautam has been appointed as the new governor of Sikkim. Besides, the president has appointed Mr. Braj Mohan Ram as the governor of Orissa, Dr. Sudha Yadav as the governor of Karnataka, and Dr. Dhal Singh Bisen as the governor of Uttarakhand. Their appointments will take effect from the dates on which they assume charge of their respective offices. India will host first ever BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah will chair the high-level meeting. The meeting underscores the shared resolve to combat terrorism, transnational organized crime, narcotics, radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats. We have a report.
2: Extending a warm welcome to all the participating home ministers and member state delegations, Union Home Minister Amit Shah said that the historic meeting underscores the shared resolve of the BIMSTEC members to strengthen cooperation in tackling common security challenges, including terrorism and organized crime. In a social media post, Mr. Shah said that through decisive coordination, the members will remain committed to building a safer, stronger and more secure BIMSTEC region. The Way of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, BIMSTEC, is a regional grouping comprising Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. It aims to promote economic and technical cooperation among countries bordering the Bay of Bengal and its neighborhood. Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
3: In Jammu and Kashmir, 4 terrorists, including a top Lashkar-e-Taiba LET commander, were killed in a landmine blast along the line of control when they were trying to infiltrate into Poonch district yesterday. The deceased terrorists have been identified as top LET commander Mohammad Faizan, Mohammad Ishtiaq, Mohammad Waqas and Mohammad Asim. All of them were residents of Mandala Madarpur in Hajira Tehsil of POJK's Poonch district. The group of terrorists was trying to sneak across the LOC in the Nangi Tekri area of Krishnaghati sector when they triggered a mine. The powerful blast killed all 4 terrorists on the spot. The exact explosion site is in the Satwal Naki Nangi Tekri area, which is a traditionally

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
1: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो।

0: सशक्त हो।
1: और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है।
0: इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से स्टार्टअप के लिए भारत में काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में ट्रैकिंग और पुल ढहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 433 अंक की वृद्धि के साथ 72,357 पर था, जबकि निफ्टी 22,490 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की वजीराला रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 अवामी ईवी चार्जिंग स्टेशनों का आगाज किया और 13 नए कंटीन्यूअस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए जनाब यादव ने दिल्ली में आलूदगी पर काबू पाने के इकदाम के निफाज में मोहतरमा गुप्ता की क्यादत की यह कहते हुए सताइश की कि हुकूमत ने आलूदगी के बड़े हॉटस्पॉट पर 11 इकदाम पर अमलावरी के इकदाम किए हैं। कोस्टा रिका के सैन जोस में भारत के नए रेजिडेंट मिशन ने कामकाज शुरू कर दिया है। इस कदम से वस्ती अमरीका में भारत की सिफारती पहचान को तकवीत मिलेगी। शेफाली वर्मा और शुभमन गिल को आईसीसी की जानिब से सितंबर 2026 के लिए खवातीन और मर्दों के प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत की ये लगातार कोशिश रही है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि भारत की सलाहियतें दूसरे मुल्कों के लिए भी इम्कान के नए दरवाजे खोलें। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम से खिताब किया। भारत ने पहली बिम्स्टेक वज़राए दाखिला मीटिंग की मेजबानी की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बिम्स्टेक इलाकाई यकजहती, इक्तिसादी तआवुन और इज्तिमाई सलामती के अहम प्लेटफार्म के तौर पर उभरा है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने साल 2026-27 के लिए भारत की मजमू घरेलू पैदावार GDP की तरक्की के तखमीने को बढ़ाकर 7% कर दिया है। और कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद आज से अपने दो रोजा भारत दौरे पर रहेंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty. Addresses Bloomberg New Economy Forum in New Delhi. Home Minister Amit Shah hails BIMSTEC as an important platform for regional integration, economic cooperation and collective security. UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali. IMF raises India's GDP growth forecast to 7% for 2026-27. Canadian Foreign Minister Anita Anand to arrive on a two-day visit to India from today. And Shefali Verma and Shubman Gill named ICC Women's and Men's Player of the Month for September 2026. Prime Minister Narendra Modi has said the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty. Mr. Modi said India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said the government's constant endeavor is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunity for other countries as well. He said the power is not just the ability to move ahead, but it is also the ability to empower others. Mr. Modi said in the present era, digital power has emerged as one of the key drivers of this transformation and playing a significant role in advancing this vision. Mr. Modi stated that digital power has opened up greater opportunities for India.
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: The Prime Minister said, whenever the world needs a steady pillar, India extends its hand in support, recognizing its responsibility. Mr. Modi said today India is home to more than 2,000 global capability centers that are providing services to companies across the world. Mr. Modi said India is the mother of democracy and it has over 100 languages, around 80,000 registered newspapers and publications, and more than 1,000 satellite television channels. Mr. Modi highlighted that India had lifted 25 crore people out of poverty over the past decade.
2: Power ke

0: was named the ICC Women's Player of the Month winner for September 2026 following incredible title-winning outings in the Women's Asia Cup and the Asian Games with the bat and clutch contributions in high-stakes matches. On the other hand, Indian captain Shubman Gill was named ICC Men's Player of the Month for a record fifth time following his outstanding performance in the one-day international series against the West Indies. Denmark Open Badminton Tournament kicks off in Odense today. PV Sindhu will take on Yvonne Lee of Germany in the women's singles round of 32 match this evening, while Tanvi Sharma will be up against Natsuki Nadera of Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty, addresses Bloomberg New Economy Forum in New Delhi. Home Minister Amit Shah hails BIMSTEC as an important platform for regional integration, economic cooperation and collective security. UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali. IMF raises India's GDP growth forecast to 7% for 2026-27. Canadian Foreign Minister Anita Anand to arrive on a two-day visit to India from today, and Shefali Verma and Shubman Gill named ICC Women's and Men's Player of the Month for September 2026. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से दो दिन के भारत दौरे पर और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा क्लाइमेट चेंज हो वाटर गवर्नेंस हो पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे नए अवसर पैदा करे
1: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है
2: पावर के पर्पज पर जो फोकस है यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है सरकार के पास

0: अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
0: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के, कृपया इसे फिर से सुन लें, भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
1: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैनजोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज

0: से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हाब्लिचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्रीय सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए 1 दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम दिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में इसमें सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई।
2: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक

से अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड पांचवीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज स्वीडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई

0: दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रांची में एक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और संस्थान में दिशा निर्देशों के पालन का आकलन करेगी। आयुष मंत्रालय ने त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार और प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के साथ योग को शामिल करते हुए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आयुष की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपचार की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नोड मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नातुस्की निदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said that the centre has embodied the principle of power to empower in his governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. Mr. Modi said country's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said the government's constant endeavour is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunities for other countries as well.
3: नॉलेज सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बढ़ाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहां जिस विजन के साथ आया हूं वो है पावर टू एम्पावर।

0: सिद्धांतः अंगीकृतः। नवदिल्ल्यां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम इति आर्थिक मंचं संबोधयता प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् जागतिक अनिश्चिततानां मध्येऽपि भारतस्य आर्थिक प्रगतिः अतीव दृढावस्थायाम् अग्रेसरा वर्तते। सः अवोचत् यत् भारतस्य विकासः सामूहिक प्रगतौ सहभाग्यवसरेषु च आधारितः अस्ति। प्रधानमन्त्री अग्रे अवदत् यत् सर्वकारस्य निरन्तर प्रयासः अस्ति यत् भारतस्य सामर्थ्यं विश्वस्य अन्यदेशेभ्यः अपि अवसाराणां नूतनद्वाराणि उद्घाटयेत्। सः अवोचत् यत् सामर्थ्यं केवलम् अग्रे गमनस्य क्षमता नास्ति, अपि तु अन्येषां सशक्तीकरणस्य क्षमता वर्तते। श्रीमोदिना उक्तं यत् वर्तमाने युगे अंकीयशक्तिः अस्य रूपान्तरणस्य प्रमुख चालकरूपेण उदिता, या अस्य दृष्टिकोणस्य विस्तारे महतीं भूमिकां निर्वहति यथ च भारते विपुलान् अवसरान् सृजति।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोणों पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् यदा कदापि विश्वस्मै स्थिरस्तम्भस्य आवश्यकता भवति तदा भारतं स्वदायित्वम् अनुभूय साहाय्यहस्तं प्रसारयति। श्रीमोदिना सूचितं यत् अद्य भारते 2,000+ वैश्विक क्षमता केन्द्राणि सन्ति, यानि सम्पूर्णविश्वस्य वाणिज्यिक संस्थाभ्यः सेवाः प्रयच्छन्ति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् भारतं लोकतन्त्रस्य जननी अस्ति, यत्र शतसंख्याधिकाः भाषाः, प्रायः 80,000 पञ्जीकृतानि समाचारपत्राणि प्रकाशनानि च, सहस्राधिकाः च उपग्रह दूरदर्शनवाहिन्यः सन्ति। श्रीमोदिना विशेषतया प्रतिपादितं यत् विगते दशके भारतेन 25 कोटि जनाः निर्धनरेखातः बहिः निष्कासिताः।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: नवदिल्ल्यां बंगालोपत्यका बहुक्षेत्रीय प्राविधिक आर्थिक सहयोगोपक्रमस्य प्रथम गृहमंत्री सम्मेलनम् भारतस्य आतिथ्ये सम्पद्यते। इदम् ऐतिहासिकं सम्मेलनम् आतंकवादस्य पारदेशीय संगठित अपराधानां मादक द्रव्य तस्कर जालस्य मतान्धतायाः मानव दुर्व्यापारस्य अवैध वित्तीय प्रवाहाणाम् अथ च साइबर आह्वानानां सम्मुखीकरणाय सामूहिक संकल्पं दृढयति। अत्रावसरे भाषमाणः गृहमन्त्री अमितशाहः अवोचत् यत् बीमस्टेक संगठनं क्षेत्रीय एकीकरणाय, आर्थिक सहयोगाय अथ च सामूहिक सुरक्षायै प्रमुखमञ्चत्वेन उदितमस्ति। सः प्रत्यपादयत् यत् भारतं वसुधैव कुटुम्बकम् इति उदात्तदर्शनेन प्रेरितं सत् सदैव विश्वशान्तये मानवकल्याणाय च प्रतिबद्धं वर्तते। आतंकवादं प्रति भारतस्य असहिष्णुतायाः नीतिं प्रतिपादयन् गृहमन्त्री सामूहिक प्रतिबद्धतायै आह्वानम् अकरोत्। अस्मिन् सम्पूर्णक्षेत्रे कस्मै अपि आतंकवादिजालाय आश्रयदानस्य नियुक्तिप्रक्रियायाः, प्रशिक्षणस्य, वित्तपोषणस्य अथवा प्रतिवेशी देशानां विरुद्धं घातुककार्याणि संचालयितुं किमपि स्थाननं न दीयेत।
2: आतंकवादियों, उनके सहायकों, आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय चैनल और सीमा पार गतिविधियों पर सत्यापित तथा कार्रवाई योग्य सूचना का समय पर आदान प्रदान हमारी सामूहिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: आकाशवाणी वार्ताभिः संयोज्यन्ताम् एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु अथ सद्यो वृत्तांताय च न्यूज ऑन एआईआर डॉट जीओवी डॉट

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है।

0: गृह मंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एन मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
1: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
2: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
1: To strengthen the party.
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पाठ।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
1: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
2: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
1: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
0: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
3: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भू स्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36

0: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गति शक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवांग शाह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
2: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28% की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18% कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
3: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
4: काउंसिल रेकमेंडेड,
5: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
2: पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
1: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
7: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेनदेन निशुल्क रहेंगे। एमडीआर शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेनदेन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेनदेन पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
8: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ।
1: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार बेलकुमार ने

रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार बेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए कृषि उत्पादकता को मजबूत करती प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: एसपी सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: ये धन्यवाद।
1: एसपी जी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई किसानों की मदद के लिए, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए और उनके रोजगार के अवसर बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इसलिए तमाम लक्ष्य निर्धारित किए गए। लेकिन अगर बेसिक तौर पर समझना चाहें तो किन किन मुख्य उद्देश्यों को लेकर के इस योजना की शुरुआत की गई थी?
2: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का जो मूल उद्देश्य है या जो सोच के किया गया, उसमें ये मान के चला गया कि देश के उन जिलों में जहां पर कृषि उत्पादकता बहुत कम है और वहाँ पे फसलों की जो सघनता कह सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, खेती के लिए किसानों को कर्ज कम मिलता है, ऐसी जगहों पे जहाँ खेती बहुत बुरे हाल में थी कह सकते हैं या बहुत न्यूनतम वहाँ की उत्पादकता थी और वहाँ के किसानों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, उनको कर्ज नहीं मिलता था, उनके खेती करने का तौर तरीका उनके पास वैज्ञानिक तरीके नहीं थे, इन सबको कैसे ठीक किया जाए, ऐसे 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षी जिलों को चिन्हित किया गया और जो 100 जिले चुने गए उनमें लगभग देश के सभी राज्यों के जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना को संचालित करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्रीय की 36 योजनाएं और जिसमें राज्य की भी योजनाएं शामिल है और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी है, यानी जो निजी क्षेत्र, राज्य की योजनाएं और केंद्र की योजनाएं, मंत्रालयों, विभागों, सारी योजनाएं जो किसानों को संबल प्रदान करती हैं, जो उनकी खेती को अच्छी बना सकती हैं, उनको लेकर के एक ऐसी योजना तैयार की गई ताकि वहाँ की उत्पादकता बढ़े, वहाँ के किसानों की स्थिति में कैसे सुधार हो सकता है। सबसे बड़े जोर दिया गया कि फसलों की उत्पादकता यानी उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, यील्ड कैसे बढ़े, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। दूसरी चीज दी गई कि फसलों में विविधीकरण, वहाँ पे कौन सी फसल बोई जाए इसका पता होना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से। इसका पता लगाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि वहाँ की मिट्टी की जांच की गई और वह स्टेट या वह डिस्ट्रिक्ट या वह क्षेत्र किस क्लाइमेटिक जोन में है, यानी वहाँ क्लाइमेट की ही फसल की खेती को किया जाए। तीसरा था कि क्या सिंचाई की सुविधा वहाँ है या नहीं है, तो दोनों स्थितियों का आकलन किया गया। उसके अलावा किया गया कि जो वहाँ उत्पादन होता है वहाँ पे भंडारण की, गोदामों की उपलब्धता है या नहीं है, क्योंकि देखा गया कि जो तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में हैं जहाँ उत्पादन तो हुआ लेकिन भंडारण की सुविधा नहीं है। आफ्टर जो हार्वेस्टिंग होता है, पोस्ट हार्वेस्ट को बोलते हैं, जो खेत से खलिहान तक आने में जो फसलों का नुकसान हो जाता है वो बहुत बड़े स्तर पर होता था, 30-35% तक नुकसान हो जाता था पूरी फसल का। ऐसे में फसलों का नुकसान न हो और उसके अलावा किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना, क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग या जो सरकारी फाइनेंसिंग बैंकों के थ्रू होती है उन तक पहुंच नहीं पाती है। इस तरह के डेटा पहले जुटाए गए और चिन्हित जब किया गया इन डिस्ट्रिक्ट को, इन जिलों के चिन्हित करने से पहले वहाँ के एक एक छोटे छोटे डेटा यानी जो आंकड़े वहाँ जुटाए गए कि यहाँ पर स्थितियाँ क्या है, कौन सी खेती होती है, कितने आय वर्ग के लोग हैं, कितने आमदनी होती है, कितना कुल उत्पादन होता है, सिंचाई का रकबा कितना है, कौन सी फसलों की खेती की जा सकती है और किसकी खेती हो रही है, तो इन सब चीजों का आकलन करने के बाद वैज्ञानिक तरीके से खेती को कैसे किया जाए, इसके लिए युवा कृषि वैज्ञानिकों को और जो बहुत कुशल टाइप के जो कृषि के अधिकारी थे उनकी ड्यूटी ऐसे जिलों में तैनात की गई, उनको लगाया गया ताकि वहाँ के किसानों को हर घड़ी वैज्ञानिक खेती के तौर तरीके मिले जिससे वो अच्छी खेती करें और उनका आमदनी बढ़े।
1: एसपी जी, 11 मंत्रालयों और विभागों के 36 केंद्रीय योजनाओं को राज्य की योजनाओं के साथ जोड़ा गया है और ये हम भली भांति परिचित हैं कि प्रत्येक राज्य की स्थिति अलग है, तो ऐसे में प्रशासनिक ढांचे के साथ साथ इन बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी होता है कि स्थिति के हिसाब से धन का आवंटन हो, जवाबदेही भी एक बड़ा मुद्दा होता है इसमें, और समय पर काम पूरा हो, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं?

0: मैंने पहले ही कहा था कि जो वहां पे गवर्नेंस के लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ऐसे कुशल वैज्ञानिकों की, ऐसे कुशल लोगों की बैंकिंग में क्षेत्र में, इन सारे लोगों को एक ऐसी कमेटी बनाई गई, सतर्कता की कमेटी की बनाई गई, और इसकी पूरी निगरानी के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और स्टेट लेवल पर ऐसी निगरानी कमेटियां बनाई गई जो लगातार इन चीजों का आकलन करती रही कि जो ये काम हो रहा है उनको ये सब चीजें उपलब्ध हो रही है, जो सरकार सोच रही है योजनाओं में जो चीजें बनाई गई हैं उन तक पहुंच रही है कि नहीं। समीक्षा और निगरानी के लिए राज्य, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां बनाई गई हैं और ये समितियां लगातार इन चीजों का आकलन करती हैं और समीक्षा करती हैं कि कहीं से कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ये जो सुविधाएं जिन किसानों को, खेती को मिलना चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है।
1: एसपी जी, अभी अगर हम इस चीज को देखेंगे, किसानों की बेसिक नीड्स क्या होती हैं, तो उन्हें इस दिशा में सहायता मिलती रहे लगातार, और बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनके पास जानकारी नहीं होती है, उनको किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है?
0: देश के ऐसे जिलों में जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बेहद पिछड़े हुए और वहाँ पे जानकारी का अभाव नहीं था या नहीं है कह सकते हैं, ऐसे में जो ये योजना बनाई गई, 6 साल की योजना है, 2025-26 में लागू की गई, 2030-31 तक चलेगी, 1,44,000 करोड़ यानी 1.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा ऐसे 100 जिलों में। यह अपने आप में एक बहुत अनूठी टाइप की योजना है जिसमें करीब 2.25 करोड़ किसानों को, और इनमें उन किसानों को लिया जाएगा जो छोटे किसान या सीमांत किसान यानी मझोले या छोटे किसानों को ही इसका लाभ देने की बात है। हमारे किसान कितने कैपेबल हैं, कितने जानकार हैं, कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं अपनी खेती को लेके, अपने तैयारी के लिए, ऐसे में प्रधानमंत्री ने सबसे पहली योजना शुरू की कि हर किसान के खेत की मिट्टी की जांच की जाए, यानी उस मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं, ताकि ऐसी खाद का या ऐसे चीजों का प्रयोग न किया जाए जिससे खेती खराब होती है, और कौन सी ऐसी खाद दी जाए जिसकी कमी है सिर्फ उतनी ही खाद देने से, यानी न्यूनतम खाद देने पर बेहतर बीज और मिट्टी हो, और इसके अलावा उनको सिंचाई की सुविधा दी जाए। हमें लगता है कि ये सुविधा सरकार ने, बेसिक सुविधा होती है किसानों को जो यहाँ के किसानों को तो दी ही जा रही है, इसके अलावा अतिरिक्त तौर पर पीएम धन धान कृषि योजना के तहत ऐसे किसानों को मतलब उन्नतशील बीज और जो उनके खेतों की या उनकी फसल की जरूरत के हिसाब से कौन सी खाद फर्टिलाइजर यूज की जाए ये इसका उपयोग, और उनकी फसल की देख रेख के लिए कोई उसमें रोग तो नहीं लग रहा है इसका भी बाकायदा कृषि वैज्ञानिक जाके उसका निरीक्षण करते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि कौन सा पेस्टिसाइड यूज करके इनको रोका जा सकता है। दूसरा है कि सिंचाई की सुविधा कितनी है, और सिंचाई की अगर सुविधा बेहतर नहीं है तो आज की तारीख में भारत सरकार ने एक ऐसी योजना चला रखी है, प्रधानमंत्री का एक नारा था है अभी कह सकते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी एक एक बूंद से ज्यादा उत्पादन लेना, यानी ड्रिप सिंचाई योजना, स्प्रिंकलर सिंचाई योजना, ऐसी योजनाओं को सरकार किसानों को सब्सिडी के आधार पर, समझिए 90% सरकार ये देती है और 10% किसान लगाता है, और ऐसे 100 जिलों में जो योजना में ये लाभ शायद 100% दिया जा रहा है सरकार की ओर से, हर किसान तक, हर खेत तक अच्छी सिंचाई की सुविधा मिल जाए ताकि उसकी खेती के लिए सिंचाई यानी पानी की कोई कमी न हो, अच्छी फसल पैदा करने के जितने भी होते हैं। तीसरी बात, आपने एक बात पूछी कि कृषि यंत्रों और जो उनको टेक्नोलॉजी खेती में यूज होती है कैसे उपलब्ध इनको कराया जाए, इसके लिए सरकार ने 2026 में एक योजना शुरू की है कृषि यंत्रों की अनुदान देने की प्रक्रिया 2026 और 27 इस साल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहले चरण में शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत किसान जो भी चिन्हित जिले हैं उन जिलों के जो किसान हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उनको अनुदान देने की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है।
1: एसपी जी, प्रधानमंत्री जी का ये एक मुख्य लक्ष्य रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में महिलाओं और युवा किसानों की भागीदारी बढ़े, तो महिला किसानों, कृषि उद्यमियों और खेती में जो नए नए प्रयोग करने वाले युवा हैं वो किस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, वित्तीय व्यवस्था उनके लिए क्या हो सकती है और आधुनिक तकनीक जो उनको उपलब्ध कराई जा सकती है, इन तमाम बातों पर रोशनी डालिए, हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: महिला जो किसान हैं और उद्यमी हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़े उद्यम में हाथ आजमाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, सरकार इसके लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराती है और देश के सारे जिलों में ये सुविधा उपलब्ध है। महिला उद्यमी और युवा उद्यमियों के लिए विशेष तौर पर लाभ दिया जा रहा है ताकि गांवों से जो लोगों का पलायन शहरों की ओर हो रहा था क्योंकि रोजी रोजगार नहीं थे गांव में, ऐसे में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और खेती के साथ जुड़े जो उद्यम होते हैं, एग्री बिजनेस इसको कहते हैं या फूड प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाने की सुविधा सरकार की ओर से दी जा रही है और ऐसे में उद्यमी आगे आ रहे हैं।

0: आ रहे हैं, ढेर सारे स्टार्टअप देश भर में खुल रहे हैं। किसानों की सुविधा देने के लिए जो डिजिटल सुविधाएं दी जाती हैं, वह भी युवा उद्यमी अपने स्टार्टअप के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रहे हैं। और तमाम ऐसे स्टार्टअप हैं जो मुफ्त में सूचनाएं देते हैं किसानों को। सरकार की ओर से देखिए, किसान को यहाँ तक सुविधा दी जाती है कि हर सप्ताह उसे यह सूचना दी जाती है कि मौसम में कैसा बदलाव आने वाला है, मौसम कैसा रहेगा, इसके अलावा उनकी फसल किस तरह की तैयार हो गई। अगर उनकी फसल में किसी भी तरह के कीड़े लगने या रोग लगने की कोई आशंका हो तो अपने फोन पर या जो आपके पड़ोस का आपके पंचायत में जो CSC खुला हुआ है, सामुदायिक केंद्र, वहां से आप अपनी सूचनाएं दे सकते हैं, अपलोड करा सकते हैं, या आपके पास मोबाइल फोन है उस पर ये डाल सकते हैं सूचना कि ये मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ये सारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे किसान को उसके खेत पर उपलब्ध हो जाता है। और खासतौर से जो चिन्हित धन धान्य कृषि योजना के तहत जो डिस्ट्रिक्ट के किसान है, उनके लिए विशेष सुविधा दी गई है कि उन्हें अगर किसी भी तरह का मौसम में परिवर्तन होता है तो उस ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए CDO या DDO या जो बैठे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला कृषि अधिकारियों को यह पहले से निर्देश रहता है कि किसानों को जागरूक बनाए रोज और उन्हें सूचना दें कि कब क्या सूचना देनी है और कब कैसे उससे अपने फसलों के बचाव कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए उनकी फसल का पैदावार अच्छी खासी हो जाती है तो अब उन्हें अपनी फसल को लगाए और जो तैयार खलिहान में आ जाती है या घर में आ जाती है तो उसे वो बाजार तक कैसे ले जाएं और किन बाजारों में ले जाएं और कहाँ रखें। तो भारत सरकार की एक योजना है बहुत बड़ी जिसको चला रहा है सहकारिता मंत्रालय। सोचिए, इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी योजना चली है प्रधानमंत्री अन्न भंडारण योजना, जो हर पैक्स में जितने भी न्याय पंचायतें, ग्राम पंचायतें या ग्राम सभाएं हैं उनके मार्फत पैक्स जो होता है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, उन्हें यह सुविधा दी गई है, सरकार की ओर से मदद दी जा रही है कि हर गांव में गोदाम बनाए जाएं। इससे भारत सरकार की बहुत बड़ी सब्सिडी कर की बचत होती है, क्योंकि अनाज एक बार खरीदती है सरकार, फिर कहीं दूर ले जाके गोदाम में उसे रखा जाता है, फिर वहां से लाया जाता है, तो लाने ले जाने लादने उतारने तो लॉजिस्टिक और इसमें जितना खर्चा होता है वो सारा बचत होगी।
1: SP जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने तमाम बातें बताई हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो FPOs हैं यानी कि किसान उत्पादक संगठन, उनकी भी बड़ी भूमिका इसमें रहती है कि वो भी काफी मदद पहुंचाते हैं किसान भाइयों को, तो इनके बारे में किस तरह से मदद इनसे ली जा सकती है, कैसे उनका लाभ उठाया जा सकता है और क्या उनका आज के समय में रोल है खासतौर पे इस योजना के संदर्भ में?
0: देखिए, मैं इसी योजना के संदर्भ में एक बात बताऊंगा आपको कि FPO का इस योजना के साथ एक संगम हुआ था 15 राज्यों और 33 जिलों के करीब 72 से ज्यादा जिसमें FPO शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उत्पादकता, बाजार तक पहुंच, आय बढ़ाने से जुड़े अनुभव साझा किए गए, जिसमें प्राकृतिक तिलहन, दलहन, मधुमक्खी पालन, संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, संस्थागत कैसे लोगों को कर्ज मिले और डिजिटल खेती जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी। और देखिए, FPO है क्या? छोटे छोटे किसानों का एक संगठन बना गया, एक समूह है, एक संकुल है, और इनकी जो समूह है मिलकर एक पूरा समूह बना लेते हैं और सारे छोटे छोटे खेतों को बड़े खेत बना दिए जाते हैं। उसके मायने यह होते हैं, उसमें आप बड़ी टेक्नोलॉजी के बड़े जो यंत्र हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। हार्वेस्टर हुआ, जब हार्वेस्ट करने की बारी आती है तो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, तो उन बड़ी मशीनों का संचालन छोटे खेतों में नहीं हो पाती। तो FPO के गठन के साथ ही किसानों को एक ताकत दी गई कि वो जब मान लीजिए बाजार से कोई इनपुट खरीदना हो, जैसे बीज लेना हो, फर्टिलाइजर लेना हो, पेस्टिसाइड लेना हो या अपना माल बाहर बेचना हो, ऐसी दशा में किसान व्यापारी से जो मोल भाव करता है वो बार्गेनिंग पावर किसान की बहुत कम होती है, उसके पास क्षमता नहीं होती अपने अनाज को रोकने की या किसी इनपुट की खरीदने में। लेकिन जब सामने वाली पार्टी को पता लगता है, इसको क्रिपको या बड़ी कंपनी को पता लगता है कि इनको तो कम से कम 3 ट्रक फर्टिलाइजर की जरूरत है, 2 ट्रक इनको ऑक्सीड की जरूरत है, ये इतने बल्क में खरीदेंगे, भारी मात्रा में खरीदेंगे, तो वो मोल तोल कर लेते हैं, तो जो चीज महंगी बिकने वाली होती है उसे सस्ती में खरीद हो जाती है। इससे ये होता है कि लागत कम आती है और बेचते समय मोल भाव करके भाव बढ़ाकर बेचते हैं, किसी कंपनी को बेचते हैं तो ऐसे में किसान को फायदा होता है। यानी FPO का फायदा हुआ तो किसान का फायदा हुआ, क्योंकि FPO उसका पार्ट है, किसान उसका हिस्सा है। तो किसान का जब हिस्सा है FPO में, उस संगठन में, तो जब FPO को फायदा होगा तो किसान को फायदा होगा।
1: SP जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: देखिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि उत्पादकता को मजबूत करती प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल